0: के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम हारवर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations, and more than 125 partner spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasised that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekanand ji, युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: The Union Government has released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer schedule for August 10. In a statement, the Finance Ministry said the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. The states include Uttar Pradesh, which received the largest share at 19,208 crore rupees, followed by Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Sikkim, Goa and Nagaland. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the National Eligibility cum Entrance Test for post

0: వైష్ణవ భక్తి గీతాలు విన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి వెలువడింది. ఆకాశవాణి నిలయంలో సమయం 8 గంటలకు వస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో సమాచార్ ప్రభాత్, అనంతరం మార్నింగ్ న్యూస్ ఢిల్లీ నుంచి రిలే.
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा. वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है. मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है. इस बार तो लगवा ही देता हूं. जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई. आप भी लगवा ही दो. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की. परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की. तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ 1 माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया. गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर. गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी. ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी. और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 4th स्थान पर. मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते. भारत के कुल पदकों की संख्या 39. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे.
4: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे. देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है. इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे. इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है. सौम्या के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं. कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही.
5: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है. पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है. आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है. आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है.
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

0: कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज

0: लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी AI की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई AI से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट PG 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो

बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है। साथियों, एविएशन सेक्टर में देश ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। कुछ ही दिन पहले कांची में जिस स्पोक एयरपोर्ट मॉडल का शुभारंभ हुआ, आज वही मॉडल पंजाब के अमृतसर तक पहुंच गया है। इससे अमृतसर से 25 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जुड़ जाएंगे। मैं इस उपलब्धि के लिए आंध्र की इस धरती से पंजाब के लोगों को भी बधाई देता हूं। हमारे आंध्र प्रदेश के पास हमेशा से विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रहा है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रयास डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़े, इसके लिए मैंने आंध्र के लोगों से डबल इंजन सरकार का आशीर्वाद मांगा था। और आज चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में, पवन कल्याण जी के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम आंध्र प्रदेश के लिए डबल स्पीड से काम कर रही है। आज देश ब्लू इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। हमारा विजन है कि पूरा क्षेत्र कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो। इसी लक्ष्य के साथ विशाखापट्टनम से कृष्णापट्टनम तक हमारे पुराने पोर्ट्स को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा मुलापेटा और रामायापट्टनम में हम नए पोर्ट भी बना रहे हैं। साथियों, पोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे आंध्र में हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार हो रहा है। विशाखापट्टनम रायपुर एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट इस पूरे क्षेत्र को रफ्तार दे रहे हैं। साथियों, ये पूरा रीजन देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से आसानी से जुड़े, इसके लिए आज आंध्र प्रदेश में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राज्य के पूरे रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यहां 70 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। साथियों, आज इस क्षेत्र के विकास में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। पीएम गतिशक्ति के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट को एक साथ जोड़ा जा रहा है। जब यहां यह आधुनिक लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, किसानों को फायदा होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। साथियों, आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है। सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक सेक्टर में आंध्र के युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है और इसलिए सरकार यहां के टैलेंट को आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट पावर से जोड़ना चाहती है। हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम

0: మీరు ఇంతవరకు చిత్రసీమ కార్యక్రమాన్ని విన్నారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 12 గంటలు కావస్తోంది. కొంచెంసేపట్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మై మునీష్ శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है.
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है. हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें. और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है.
1: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे. माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे. अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की. बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया. ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी. श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें. उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे. साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे. उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के

0: दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country are participating in the event. The participants include My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. President Draupadi Murmu flagged off a Run PBG Soldier-a-thon at a ceremony held at the forecourt of the Rashtrapati Bhavan this morning. Governor of Mizoram General V.K. Singh, who is the patron of the initiative, was also present on the occasion. In a social media post, the president said that the Soldier-a-thon serves as a unique platform to strengthen the bond between civilians and the armed forces, guided by the vision of Run for Soldiers, Run with Soldiers. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for the postgraduate 2026 to ensure a smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. Union Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandviya today participated in the 84th edition of the Sundays on Cycle.

0: वर्क्स। तो ये जो है, जो पॉलिसीज है, जो इनिशिएटिव्स है, उसको हम कैसे और आगे लेके जाए और मजबूत बनाया जाए और ये कैसे लोगों तक लेके जाए, यही इस साल का थीम है।
1: जी, जैसे आपने अभी बताया स्तनपान है जीवनदान, तो एक नवजात शिशु के लिए ये स्तनपान क्यों ज़रूरी है? आप चाहें तो मतलब बाहर का भी दूध पिला सकते हैं, लेकिन स्तनपान को ही सबसे ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है?

0: डिलीवरी के बाद तुरंत जो आता है 3-4 दिन के लिए, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये तो बोलते हैं ये फर्स्ट वैक्सीन है बेबी के लिए,
1: जी,
0: इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो आगे जाके उसको कुछ डिसीजेस में आए उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो पैदा होते ही हम दिया गया। तो जो बाहर की दूध है उसमें तो ये सब नहीं होते हैं,
1: जी
0: तो मदर का दूध ही सबसे अच्छा है। और इसमें सब है, फैट्स है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी बच्चे के लिए चाहिए सब मिलके सिर्फ दूध में आ जाती है,
1: मतलब सारे पोषक तत्व माँ के दूध से ही बच्चे को मिल जाते
0: मिल
1: हैं, तो
0: जाते हैं,
1: बाहर के दूध की आवश्यकता ही नहीं है।
0: आवश्यकता ही नहीं है। दिए तो भी वो जो माँ की दूध से आते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं जो बाहर की दूध से दिया गया। तो
1: जी, बिल्कुल श्वेता जी, मेरा अगला प्रश्न यह है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान शुरू कराने की सलाह क्यों दी जाती है और इसके क्या प्रमुख लाभ हैं?
0: हाँ, स्तनपान हम बोलते हैं कि तुरंत डिलीवरी के बाद, जो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, तुरंत डिलीवरी के बाद हम स्तनपान आधा घंटे के अंदर शुरू करने के लिए एडवाइस देते हैं। ये क्यों है? जब ये बच्चे को इमीडिएटली तुरंत दे सकते हैं तो बच्चे का ग्लूकोज ड्रॉप नहीं होता है, उसका पोषक आहार जो चाहिए होता है इमीडिएटली मिल जाता है। और जब ये देते हैं माँ को भी, सिर्फ बच्चे को ही नहीं, माँ का भी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से उसका ब्लीडिंग कम होने का चांसेस होता है और बाद में उसका शारीरिक शक्ति भी नॉर्मल आने का बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं।
1: जी, जन्म के तुरंत बाद यदि बच्चे को स्तनपान कराया जाए तो उसकी पूरी ग्रोथ पर उसका प्रभाव पड़ता है।
0: इमीडिएटली, हाँ
1: तो जैसे आपने ये बताया कि स्तनपान जन्म के तुरंत बाद शुरू कर देना चाहिए, तो ये कब तक कंटिन्यू रखा जाए? तो इसका कोई अवधि है कि बच्चे को कब तक दिया जाना चाहिए और कब उसको बंद कर देना चाहिए?
0: हाँ ये भी है। स्तनपान को 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए सिर्फ स्तनपान को जारी रखना चाहिए, उसके बाद भी हो सकता है तो 1 साल, एंड और भी दूध आ रहा है माँ को, हो सकता है तो 18 महीना, दैट इज 18 मंथ्स तक दिया जाए तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पहला 6 महीना उसको कुछ और नहीं दिया जाता है, सिर्फ स्तनपान से उसको जो भी पोषक आहार चाहिए वो स्तनपान से मिल जाता है। तो पानी भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ स्तनपान एक्सक्लूसिव उसको अगर 6 महीने दिया गया तो वो बच्चा अभी नहीं, आगे जाके भी, बड़ा होके भी कुछ उसको डिसीजेस आने की संभावना बहुत कम होता है।
1: जी, मतलब 6 महीने तो हर हालत में बच्चे को स्तनपान कराना है, और
0: देना
1: बिना
0: ही,
1: कोई ऊपर से कोई भी आहार नहीं भी दें तो स्तनपान बच्चे के
0: हाँ
1: लिए मतलब सफिशियंट है।
0: सफिशिएंट है। 6 महीने के बाद हम थोड़ा बहुत खाना भी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ स्तनपान दिया जाए तो अच्छा है। और 1 साल के बाद अगर वो बच्चा लो वेट है, कमजोरी है, तो उसके लिए स्तनपान देना है तो भी दे सकते हैं। अगर 1 साल तक दिया है तो सबके लिए बहुत अच्छा है।
1: जी, मतलब आप लगभग यदि स्तनपान कराना चाहें तो 1 साल तक तो करा ही सकते
0: करा
1: हैं।
0: ही सकते हैं।
1: जी, ये तो स्तनपान की बात कि यदि जिस माँ को दूध आता है तो स्तनपान कराना जरूरी है, लेकिन कई बार ये समस्या भी देखी जाती है श्वेता जी, कि माता तो चाहती है, माँ चाह रही है कि वो स्तनपान कराए, लेकिन उनको दूध नहीं आ रहा है। इस समय माँ को क्या करना चाहिए?
0: हाँ ये बहुत बार मदर को बहुत डर लगा रखा होता है कि डिलीवरी के बाद मुझे दूध आएगा, मेरी फ्रेंड को दूध नहीं आया था या मेरी बहन को दूध नहीं आया, मुझे कैसा होगा। ये तो डर डिलीवरी के पहले से ही चालू होगा। मगर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि डिलीवरी के तुरंत बाद जितना भी आए, 1 बूंद हो, 2 बूंद हो, जो भी है, आप स्तनपान करना तो चालू रखिए। और क्योंकि ये डिलीवरी बहुत स्ट्रेसफुल चीज होता है, तो इमीडिएटली ज्यादा महिलाओं को 1-2 दिन के लिए नहीं आता है, तो डरो मत, घबराओ मत, 1-3 दिन के बाद चालू हो जाता है। और स्तनपान तो पहले आधा घंटे के बाद से, ये डिलीवरी के आधा घंटे के बाद से हर 2-3 घंटे को स्तनपान देना चालू रखिए, ताकि थोड़ा थोड़ा करके दूध आ जाएगा। अगर फिर भी 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद दूध नहीं आ रहा है तो थोड़े मेडिकल सपोर्ट भी ले सकते हैं। अभी बहुत सारे टैबलेट्स हैं, अभी पाउडर्स भी दे रहे हैं कि माता का दूध ज्यादा आए, और खाने में भी थोड़ा बहुत हरी सब्जियां खाए और दूध की चीजें खाए और थोड़ा पोषक आहार अच्छा लिए, पानी

0: अच्छा लिए तो भी दूध आ जाती है। तो पहले दिन से या डिलीवरी से पहले ही ये डर मत लगाए रखिए, क्योंकि सब महिलाओं को आती है, मगर वो सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है।
1: जी, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा
0: पेशेंस,
1: और कोशिश करती रहनी
0: कोशिश
1: पड़ेगी।
0: करते रहना है।
1: ये नहीं कि एक शुरू में नहीं आया तो
0: हाँ,
1: उसके आशा ही छोड़ने हैं।
0: छोड़ नहीं देना है, क्योंकि
1: हाँ
0: बच्चा पैदा होते ही कभी कभी क्या होता है, लैच नहीं कर पाएगा माँ
1: जी।
0: की निपल को। तो उसके लिए थोड़ा सब्र करना जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अपने आप सीख जाएगा तो एक दो दिन में, तब अपने आप जब सकलिंग अच्छा होता है तो दूध अपने आप आ जाएंगे।
1: जी। अब जैसे ये तो दूध आने की बात हुई, लेकिन कई बार श्वेता जी ये भी देखा जाता है कि दूध आ रहा है और 1-1.5 साल हो गया है और माँ बच्चे को दूध पिला रही है। कई बार 1.5 साल के बाद माँ बंद करना भी चाहती है लेकिन वो दूध आते ही रहता है, तो उस समय कैसे दूध को रोका जा सकता है?
0: हाँ, तो क्या है, अभी 18 महीने के बाद जब दूध देते हैं बच्चे को, इसका मैं बोल सकती हूँ बेनिफिट से ज्यादा नुकसान ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ पानी का बराबर है। तो जब ये दूध पी रहा है तो बच्चा बाकी का खाने पे ध्यान नहीं जाता है। अभी दूध पी लिया तो हो गया, उसका पेट भर गया, और जो पोषक आहार उसको 18 महीने में मिलना चाहिए वो बिल्कुल दूध से नहीं होता है, और ये पेट भरने की वजह से जो खाना चाहिए उसको वो नहीं खाता है। तो तब अगर माँ बंद करना चाहती है तो उसका पहले वो बच्चे को देना बंद करना है, उसको अवॉइड करना है। और उसका हम अगर उनका गायनेकोलॉजिस्ट से मिले तो एक दो टैबलेट्स होते हैं जो दे ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। एंड ये करने से कई लोग सोचते हैं कि आगे जाके दूसरी डिलीवरी में, अगर ये पहला डिलीवरी निकला तो दूसरी डिलीवरी में दूध नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपोह है। तो अभी दूध बंद करने के लिए कुछ टैबलेट्स लिए तो भी बार नेक्स्ट प्रेगनेंसी में या नेक्स्ट डिलीवरी में दूध आना बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। और 18 महीने के बाद अगर बच्चा अच्छा वेट है, बंद करना ही अच्छा है, तो ये सहारा ले सकते हैं।
1: जी, मतलब यदि आप बंद करना चाहते हैं और नहीं आपसे संभल पाता है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं।
0: जरूर।
1: जी, ये तो हुई शिशु की बात। यदि हम माँ की बात करते हैं तो शिशु के साथ साथ माँ का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, तो स्तनपान से माँ को शारीरिक और मानसिक रूप से क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तब सारा कंसंट्रेशन बच्चे के ऊपर चला जाता है, तो
1: जी।
0: माँ को कोई देखता ही नहीं। मगर भगवान ऐसा अच्छा विषय डाला है इस डिलीवरी में कि वो जब दूध देती है तो अपने आप वो जो हेल्थ उसका होता है अच्छा हो जाता है। ये बहुत सी चीजें हैं, जब स्तनपान दिया जाता है तो मदर का हार्मोन लेवल्स नेचुरल की तरफ बढ़ती है, और उसकी वजह से जो बच्चेदानी है वो डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना भी बड़ा होता है वो नॉर्मल साइज में आने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। ये बोलते हैं इन्वोल्यूशन, यूट्रस इन्वोल्यूशन बोलते हैं, वो स्तनपान से रिलीज हुई हार्मोन ऑक्सीटोसिन की वजह से ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है, नॉर्मल साइज में आ जाती है। और एक और बात है, जब स्तनपान देते हैं मदर अपने आप बच्चे से बॉन्ड हो जाती है, और ये बॉन्डिंग की वजह से उसको पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन जो होता है या अकेली है वो, ये बॉन्डिंग की वजह से बहुत आसान हो जाती है उसका आगे जाना।
1: जी, मतलब बच्चे के साथ साथ माँ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए
0: चाहिए,
1: क्योंकि उसका भी हेल्थ पे उस पर फर्क पड़ता ही है।
0: क्योंकि इसीलिए बोलते हैं डिलीवरी एक और जन्म है, तो ये उसका एक जन्म, दूसरी जन्म लेने के बाद कोई उसको देखते ही नहीं है, बच्चे के ऊपर ही चले जाते हैं,
1: जी
0: मगर
1: जी जी
0: वो माँ है जो ये स्तनपान की वजह से बहुत सी नॉर्मल की आने की चांसेस ज्यादा होते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल। श्वेता जी, आजकल स्तनपान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां समाज में मौजूद हैं, तो मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि ऐसी कौन सी गलत फहमियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है?
0: स्तनपान का कुछ भी नेगेटिव थिंग्स कुछ भी नहीं है, पहली बात तो जो भी है सब अच्छे के लिए ही है। जो गलत फहमियां हैं, सबसे पहला वाला मैं बोलना चाहती हूँ कि जब दूध देते हैं सोचते हैं कि ये ब्रेस्ट सैग हो जाते हैं बड़े होके उसके बाद सैग हो जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो ये मैं बहुत सी औरतों को बोलना चाहूँगी।

0: बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी सैग हुए तो भी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं जब आप स्तनपान बंद कर देते हैं। और एक और बात है, जब स्तनपान देते हैं तो सोचते हैं कि बहुत कमजोरी हो जाती है, मेरी बच्ची बहुत कमजोर है, वो दूध नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्तनपान से इनफैक्ट आप बहुत हेल्दी होते हैं, आपको अच्छा भूख लगती है, अच्छा हाइड्रेशन लेते हैं स्तनपान के लिए कम से कम, तो उसकी वजह से भी मदर का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। और जो मैं बोल रही हूँ पहले से, ये स्तनपान से हार्मोनल बैलेंस जो होता है और जो यूट्रस का नॉर्मल साइज पे आना जो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मदर के लिए, जो किसी और तरह से नहीं करा जाता है।
1: जी, मतलब स्तनपान तो कराना जरूरी है, उसके
0: बिल्कुल
1: लिए कोई भी मन में विचार ना रखें,
0: न
1: क्योंकि
0: रखे,
1: बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है स्तनपान।
0: सही है,
1: बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ही कवर हो जाएंगी।
0: कवर हो जाते
1: जी
0: हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात। जैसे कि श्वेता जी, हम सब जानते हैं कि जब एक परिवार में नया सदस्य आता है तो परिवार भी उस सदस्य का ध्यान रखता है। तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि एक नई माँ के लिए स्तनपान के दौरान परिवार और समाज का क्या सहयोग होना चाहिए?
0: हाँ, स्तनपान जो है जब देते हैं, माँ का भी न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, उसका वो क्या पीती है, वो क्या खाती है, कैसे सोती है, वो सब की वजह से भी स्तनपान का इफेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ, अगर मदर स्ट्रेस में है, ज़्यादा अच्छा खा नहीं पा रही है, तो स्तनपान ज़्यादा नहीं हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग, ज़्यादा दूध नहीं आने का चांसेस है। तो अगर उनका फैमिली उनके साथ दे, वो आहार में जो भी अच्छा चीज़ें खिला सकते हैं और याद दिला सकते हैं कि आप ये पानी पियो, ये बटर मिल्क पियो या दूध पियो, अच्छा सा पौष्टिक आहार खाओ, एग्स खाओ, इस सब से क्या होता है, सिर्फ परिवार ही बता सकती है। और इसकी वजह से उसका जो स्तनपान करने की स्ट्रेस वो जो है वो बिल्कुल भी कम हो जाती है।
1: जी, मतलब परिवार का भी बराबर सहयोग होना चाहिए माँ के लिए और बच्चे के लिए भी, दोनों के
0: बहुत
1: लिए ज़रूरी है। ऐसा
0: हाँ
1: नहीं कि सिर्फ बच्चे की देखभाल हो रही है और माँ की तरफ ध्यान ना दिया जाए।
0: हाँ माँ का
1: तो
0: ध्यान
1: उनका
0: बहुत ज़रूरी
1: बहुत
0: है,
1: ज़रूरी है, उनका खाना पीना भी बहुत
0: बहुत
1: ज़रूरी है।
0: ज़रूरी
1: जी
0: है।
1: जी बिल्कुल सही बात। जैसे कि श्वेता जी, हम सभी जानते हैं आजकल की महिलाएं घर के कामकाज के साथ भी बाहर के काम में, अपने जॉब्स में बिजी रहती हैं। तो आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में कामकाजी माताओं के सामने अलग चुनौतियां होती हैं। तो अगला प्रश्न यही है कि कामकाजी माताएं स्तनपान को कैसे जारी रख सकती हैं और उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
0: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से ही जवाब दे सकती हूँ।
1: जी,
0: मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मैंने मेरी डिलीवरी के 2 महीने बाद ही मेरा काम शुरू कर दिया था। तो जब मैं घर आती थी, रात को डायरेक्टली देती थी, और सुबह जो होता है जब काम के लिए निकलती हूँ, तो मैं ब्रेस्ट पंप के साथ ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके, वो स्टोर करके, बहुत सी अभी टेक्नोलॉजीज आए हैं, बहुत सी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आए हैं, जो दूध निकाल के फ्रीज करके भी दे सकते हैं, अगर आपको काम जारी रखना है। तो ये ऑप्शन हर महिला को, हर काम करने वाली महिला को है। तो इसके लिए एक और बात है, जो जहाँ पे काम कर रही है वो वहाँ की हेल्प भी, वहाँ का सपोर्ट भी उसको चाहिए होता है। ये कुछ रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, जो आप काम करते हुए भी बिल्कुल दूध जारी रख सकते हैं, दूध देना जारी रख सकते हैं, 6 मंथ्स नहीं, 1 साल तक भी, जस्ट विद द सपोर्ट ऑफ योर ऑफिस पीपल।
1: जी, तो मतलब काम काज भी चलता रहे लेकिन बच्चे का ध्यान भी रखना उतना ही ज़रूरी है। तो
0: जरूर,
1: स्तनपान बहुत ज़रूरी है काम काज के साथ।
0: हाँ
1: अब हमारा कार्यक्रम जैसे कि अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, तो अंत में मेरा आपसे यह प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: ये अवसर पर मैं सब महिलाओं को या सब माताओं को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी अपोह है, आप आपके डॉक्टर से डिस्कस करिए, आपकी डॉक्टर है वो अपोह को निकालने के लिए, आप पूछ सकते हैं उनसे। और हर माता अगर स्तनपान देगी तो वो बस वो शिशु के लिए है तो ही महत्वपूर्ण, और वो औरत को भी, क्योंकि इससे ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर्स का बहुत रिस्क कम हो जाता है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है माता के लिए, एक
1: जी
0: औरत के लिए।
1: जी
0: तो हर माता स्तनपान का कोशिश

0: करना ही है।
1: जी। श्वेता जी, आपने अपने अनुभव और विचारों के माध्यम से स्तनपान के महत्व को बहुत सरल और प्रभावशाली ढंग से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: श्रोताओं, याद रखिए कि माँ का दूध शिशु के लिए प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। यह न केवल पोषण देता है, बल्कि रोगों से सुरक्षा, भावनात्मक जुड़ाव और स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव भी रखता है। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आकाशवाणी हैदराबाद को अपना अनमोल समय दिया।
0: थैंक यू।
1: आकाशवाणी हैदराबाद से अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था स्तनपान है जीवन दान। और इस भेंट वार्ता में सहभागी थी डॉक्टर श्वेता श्री रवि। आपसे बातचीत कर रही थी सुरभि जैन। श्रोताओं, इस भेंट वार्ता से हमने जाना कि एक माँ का आत्मविश्वास, परिवार का सहयोग और सही जानकारी मिलकर हर बच्चे को जीवन की सबसे स्वस्थ शुरुआत दे सकते हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक मधुर गीत, जिसे फिल्म आराधना से लिया गया है और जिसे सुर दिया है लता मंगेशकर जी ने।

आइए अब सुनते हैं अगला गीत, जिसे फिल्म राजा और प्रजा से लिया गया है, जिसे सुर दिया है लता मंगेशकर जी ने।

0: कि इस तरह के कुंभों को बरवक्त मदद के लिए आगे बढ़कर खुलकर बात करनी चाहिए और माहिरीन से सलाह लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुंभों को इब्तदाई मरहले में ही तंबीह की अलामतों का पता लगाने की खातिर खुली बातचीत का माहौल कायम करना चाहिए और बच्चों को बरवक्त मदद फराहम करनी चाहिए। जनाब मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा और प्रोफेसर साहिबान से भी अपील की कि वो तलबा के साथ गुफ्तगू में मुनशियात की लानत के खतरा के बारे में बाकायदगी से बात करते रहें और कैंपस में बेदारी की मुहिम का एहतमाम करें। इस प्रोग्राम में मुल्क भर में 28,000 मुकामात से 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के शुरका में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानी तंजीमों के शुरका के साथ साथ माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार भी शामिल हैं। अमेरिका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा ने जोर देकर कहा है कि अगर पाकिस्तान दो तरफा मामलात पर भारत के साथ इश्तराक चाहता है तो उसे दहशतगर्दी के उस बुनियादी ढांचे को पहले ख़त्म करना होगा जो उसने बना रखा है। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मुअत्तल रखने के भारत के फैसले पर एहतजाज के लिए हाल ही में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस तलब की थी। जनाब विनय मोहन क्वात्रा ने एक न्यूज़ मैगजीन में शाये होने वाले मजमून में पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारजा के उस बयान पर नुक्ताचीनी की है जिसमें उन्होंने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के बारे में पाकिस्तान के मुतालबात पूरे न होने की सूरत में भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी थी। भारतीय सफीर ने कहा कि अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत के खिलाफ जंग लड़ने की धमकी देना पाकिस्तान की एक पॉलिसी बन गई है। जनाब क्वात्रा ने यह भी कहा कि कॉन्फ्रेंसें तलब करके भारत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को पानी की अपनी कमज़ोर सलाहियत को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी हर अंदरूनी नाकामी के लिए भारत पर इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान की पुरानी रविश है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। केरल में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है जबकि 8 दिगर अफराद लापता बताए गए हैं। कल के मुकाबले आज बारिश का जोर कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मुतासरा इलाकों में 5,700 से ज्यादा अफराद को 209 इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। रियासती सरकार के मुताबिक 27 मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं जबकि 196 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ ज़िलों से फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचने की इत्तला मिली है। पहाड़ी इलाकों और दरिया के किनारे के नज़दीक रहने वालों को सलाह दी गई है कि वो चौकस रहें। इधर भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के 12 ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के साहली इलाकों में माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो आज समुद्र में ना जाएं। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालाकृष्णन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान पर फौजी हमला फिलहाल न करने से इत्तफाक कर लिया है। इससे कबल ईरान और मगरबी एशिया के कई मुल्कों ने हमले रोकने की अपील की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि एक मुमकिन समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन सिफारतकारी के लिए मौका फराहम करने की खातिर हमलों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ख्वातीन के ताइपे ओपन सुपर सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की 6 नंबर की खिलाड़ी गुइन थुई लिन्ह को 21-16, 21-16 से हरा दिया। इस तरह 17 साल की तन्वी शर्मा ने पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है और वो ताइपे ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर है। भारत ने अब तक चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे भी जीते हैं। इससे कबल भारत ने मुक्केबाजी में सोने के 7 तमगे जीते जो कि एक रिकॉर्ड है। भारतीय मुक्केबाजों ने दौलत मुश्तरका खेलों में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। सोने के 7 तमगों के साथ साथ मुक्केबाजी में चांदी के 3 तमगे भी मिले। इधर जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने 4 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। احمدآباد کو گلاسگو میں جاری 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں کی اختتامی تقریب کے دوران دولت مشترکہ کھیلوں کا پرچم اور میزبان شہر کے بیٹن

0: His earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parikh for Akashvani News.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त करें।

0: करने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

0: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी सच्चे

0: गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम।

0: औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उबर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch marks the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
2: Nasha केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. The participants included My Bharat and National Service Scheme.

वस्तु का। यही कारण है कि प्लेटो और हेगल को विचारवादी या तत्ववादी आइडियालिस्ट कहा जाता है। अस्तित्ववाद के विचारकों की धारणाएं संक्षिप्त में प्रस्तुत है। विचारक किर्केगार्ड के अनुसार मनुष्य के मन में जो संघर्ष और द्वंद्व फूटते हैं, जो वेदना वह सहता है, उसी से वह निर्णयों तक पहुंचता है। भय और त्रास से हमें बोध होता है कि अस्तित्व क्या है और मृत्यु क्या हो सकती है। अपराध और पश्चाताप की भावनाओं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि नैतिक आधार क्या है और हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। वेदना से व्याकुल होकर हम ऐसे संसार की आकांक्षा करते हैं जो सो उद्देश्य और व्यवस्थित हो। जब मन दुखी होता है तब हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर क्या है। किर्केगार्ड के अनुसार हमें अपने अस्तित्व के यथार्थ का बोध अपने भीतर से होता है। अस्तित्ववादी विचारकों में सर्वाधिक महत्व जी पी सार्त्र का है। विशेष रूप से फ्रांस में अस्तित्ववाद का प्रभाव अधिक था। 1946 में सार्त्र ने एक भाषण दिया जो पुस्तक रूप में छपा, वह अस्तित्ववाद मानववाद के नाम से है। सार्त्र का कहना है कि मनुष्य जब पैदा होता है तब वह तुरंत मानवीयता प्राप्त नहीं करता अपितु अर्जित करता है, स्वतंत्र इच्छा से उद्देश्य निश्चित करता है। मानवीयता नाम की कोई ईश्वर निर्मित वस्तु नहीं है। मनुष्य संसार में अकेला है, उसे अपना भाग्य स्वयं निर्मित करना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्देश्य स्वयं निश्चित करें। जर्मन दार्शनिक कार्ल यास्पर्स ने सिद्ध किया कि बड़े बड़े कल कारखानों वाली वर्तमान सभ्यता एक रोग है। मनुष्य भी मशीन की तरह कार्य कर रहा है। व्यवस्थाओं ने मानव मन को कुचल डाला है। मनुष्य अपने बाह्य जीवन को देखकर समझता है कि वह प्रगति कर रहा है, पर वास्तव में वह अपनी मूल आंतरिक शक्ति का नाश कर रहा है। उसकी व्यक्तिगत स्वच्छंदता का दमन हो रहा है। कार्ल यास्पर्स के समकालीन विचारक मार्टिन हाइडेगर भी जर्मन थे। इनका सिद्धांत था, मनुष्य जिस संसार में जन्म लेता है उसे वस्तुगत रूप से जान नहीं सकता, वह स्वयं को मायालोक में खोया हुआ पाता है, किंतु मनुष्य को इसी में जीना पड़ता है। जीने के इसी दायित्व से वह घुट घुट कर रह जाता है। अतः उसके लिए आवश्यक है कि वह इस सत्य को जाने कि यह संसार निरुद्देश और निरर्थक है। उसे अपने उद्देश्यों को स्वयं निश्चित करके जीवन को सार्थक बनाना है। अस्तित्ववाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में कुछ अंश इस प्रकार है। अस्तित्ववादी अनास्था, अस्तित्वबोध, व्यक्तिकता की स्थापना, पीड़ा की स्वीकृति, भोग, प्यार, निराशा और मृत्यु को मानते हैं। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में अस्तित्ववाद का प्रचार अधिक हुआ है। अशोक वाजपेयी, दुष्यंत कुमार, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, शांता सिन्हा, धर्मवीर भारती आदि ने कविताओं के माध्यम से अस्तित्ववादी जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है। कहा जा सकता है कि आधुनिकता के इस दौर में मनुष्य अस्तित्ववाद से प्रभावित है। अतीत की संपदा उसने ठुकरा दी है, भविष्य की कल्पना को वह स्वीकार नहीं करता। उसका वर्तमान सिकुड़ कर इतना छोटा हो गया है कि उसे क्षण कहना पर्याय उचित होगा। व्यक्ति के अस्तित्व को ही प्रमुखता देने के अतिरिक्त अस्तित्ववादियों की अस्तित्व के संबंध में कुछ धारणाएं और भी हैं। एक तो जैसा कि उपर्युक्त धारणा से सूचित होता है कि उनकी सामान्य विचारों, तत्वों या सिद्धांतों या नियमों में कोई आस्था नहीं है। उनके विचार से प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है। दूसरे शब्दों में उसके विचार से हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना या बनाना चाहिए। दूसरों द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। दूसरे, वह व्यक्ति के अस्तित्व को भी स्वयं व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर मानता है। यह कहना उचित होगा कि व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता एवं परिस्थितियों पर अथवा उसके पूर्व कर्म पर आधारित है, उसकी दृष्टि में उचित नहीं है। उसके विचार से प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। व्यक्ति अपने लिए जो चुनता है वही उसे मिलता है, या यो कहें कि व्यक्ति जैसा अपने को बनाना चाहता है वैसा ही वह बनता है। अतः कोई व्यक्ति क्या बनता है या क्या नहीं बनता, यह उसकी अपनी पसंद पर निर्भर है।
यह कहना

परिस्थितियों और भाग्य ने उसे बना दिया है। अस्तित्ववादियों के अनुसार यह ठीक नहीं। परिस्थितियों के बंधन को स्वीकार करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। अतः परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने के लिए स्वयं व्यक्ति ही उत्तरदायी है। अस्तित्ववादियों का जीवन दर्शन में पीड़ा की प्रधानता अधिक है। जिन महापुरुषों ने मानव को सुखी बनाने का प्रयास किया है, उनका मूल्यांकन करना व्यर्थ है। उनकी दृष्टि में आज तक कोई भी मानव को सुखी बनाने में सफल सिद्ध नहीं हुआ। किसी भी उसके विचार अनुसार, एक तो प्रत्येक मानवतावादी समाज सुधारक ने न किसी सिद्धांत, नियम, व्यवस्था का आविष्कार करके मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कम कर देने का अपराध किया, बल्कि उसकी महानता को मानने का अर्थ है व्यक्ति पर व्यक्ति की प्रभुत्ता स्वीकार करना। इस प्रकार मानव जाति की सेवा, समाज सुधार, राजनीतिक परिवर्तन से प्राप्त होने वाले सुखों में अस्तित्ववादी दुख और अवसाद को जीवन का अनिवार्य तत्व मानते हैं। दुख को विवशता के रूप में नहीं, अपितु एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार करते हैं, जो पीड़ा दर्शन पर आधारित है। सार रूप में कहा जा सकता है, चयन की स्वतंत्रता या व्यक्तिक स्वतंत्रता ही अस्तित्ववाद का सर्वोपरि मूल्य या अस्तित्ववादी जीवन दर्शन है। परंपरागत विचारों के अनुसार सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मूलतः वैभव एवं सम्मान प्राप्त करना होता है, तथा साथ ही दूसरों को सुख पहुंचाना भी व्यक्ति के लिए आदर्श माना जाता है। मानव जाति के इतिहास में जिन महान चिंतकों, साधकों एवं समाज सेवियों को प्रतिष्ठा प्राप्त है, उन सब नैतिकता का कोई भी आदर्श और विज्ञान का कोई भी आविष्कार मानवता को पूर्ण सुखी नहीं बना सकता। वस्तुतः पूर्णतः संतुष्ट

0: नैतिकता का कोई भी आदर्श और विज्ञान का कोई भी आविष्कार मानवता को पूर्ण सुखी नहीं बना सकता। वस्तुतः पूर्णतः संतुष्ट और सुखी होना मानव की प्रकृति में ही नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि जब तक मनुष्य है तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता, या तो वह मनुष्यता को त्यागने फिर सुखी होने की आशा करता है। अस्तित्ववादी मानते हैं कि मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए सभी व्यक्ति एवं सामाजिक प्रयास निरर्थक है। साथ ही इस दृष्टि से व्यक्तियों तथा कथित महापुरुषों का मूल्यांकन करना भी व्यर्थ है। सच पूछे तो उसकी दृष्टि में आज तक कोई भी मानव को सुखी बनाने में सफल सिद्ध नहीं हो सका। कहा जा सकता है कि मानव हितेशियों एवं समाज सुधारकों को अपने लक्ष्य में पूर्ण सफलता भले ही न मिली हो, पर उसकी प्रेरणाओं, प्रयोजनों एवं प्रयासों की महानता के आधार पर तो उनका महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए, पर अस्तित्ववाद इसे स्वीकार नहीं करता। उसके विचार अनुसार एक तो प्रत्येक मानवतावादी समाज सुधारक ने किसी न किसी सिद्धांत, नियम या व्यवस्था का आविष्कार करके मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर देने का अपराध किया है। अच्छा होता कि वे यह सब कुछ न करते। दूसरे, उनकी महानता को मानने का अर्थ है दूसरे व्यक्तियों की महत्ता को कम करना, व्यक्ति पर व्यक्ति की प्रभुत्ता को स्वीकार करना। यह स्थिति भी अस्तित्ववादी के लिए असहज है। अतः किसी दृष्टि से वह न तो अतीत के समाज सुधारकों की देन स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है और न ही भविष्य में स्वयं को इस खोटे धंधे में डालने को उत्सुक है। यदि उसका वश चले तो वह इन सभी तथाकथित मानव हितैषियों एवं समाज सेवकों को धरती पर से ढकेल कर एक ऐसी साफ सुथरी एवं स्वतंत्र भूमि का रूप दे दे जिसमें हर व्यक्ति को अपनी मनचाही करने की पूरी छूट हो, हर कार्य के लिए स्वच्छंदता हो और कहीं भी किसी को टोकने वाला न हो। हो सकता है इसका परिणाम अव्यवस्था, अशांति, संघर्ष एवं मृत्यु हो, पर इसकी क्या चिंता है? मृत्यु तो अनंत होनी ही है। क्यों न डरकर अंत में मरने के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता से जीते हुए साहसपूर्वक उसका वर्णन करें। मृत्यु हमें आकर आक्रांत करे, इससे अच्छा यह है कि हम स्वयं जाकर मृत्यु का सामना करें। उस स्थिति में हम दावा कर सकेंगे कि हम मृत्यु के द्वारा मारे नहीं गए, अपितु हमने स्वेच्छा से मृत्यु का वर्णन किया है। वस्तुतः इस प्रकार का मरना ही तीकवाद स्वच्छंदता का प्रमाण होगा। और सच पूछे तो अस्तित्ववादी की दृष्टि में इस व्यक्तिक स्वच्छंदता से बढ़कर जीवन का और कोई मूल्य नहीं है। अस्तु, मानव जाति की सेवा, समाज सुधार या राजनीतिक परिवर्तन से प्राप्त होने वाले सुखों में अस्तित्ववादी का कोई विश्वास नहीं है। इसकी अपेक्षा वह दुख और अवसाद को जीवन के अनिवार्य एवं काम्य तत्वों के रूप में स्वीकार करता है। दुख को विवशता के रूप में नहीं अपितु एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार करना उसकी दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि दुख में ही व्यक्ति की अंतश्चेतना का पूर्ण जागरण होता है, उसी में उसकी सारी शक्तियों का उद्बोधन होता है और जिसमें व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध होता है। तथा यदि आप मेरे हाथ बिना मुझे पीड़ा पहुंचाए उसे चेतना शून्य करके काट देंगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा हाथ कट रहा है, जबकि दूसरी स्थिति में यह अनुभव होने पर कि मेरा हाथ कट रहा है अपने अस्तित्व का बोध होगा। इतना ही नहीं, वेदना जितनी गहरी होगी अस्तित्व का बोध भी उतना ही गंभीर होगा। अतः पीड़ा इनके यहाँ एक महत्वपूर्ण मूल्य या वांछनीय तत्व के रूप में स्वीकृत है।
1: अस्तित्ववाद, दैट वॉज अ लेसन फ्रॉम हिंदी फॉर सेकेंड ईयर PG स्टूडेंट्स।
2: Education at your doorstep. That was a program of learning for everyone. Brought to you by Dr. B.R. Ambedkar Open University. So listeners, it's bye till our next radio lesson.

0: सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरला में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा, समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में

0: आपके हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जनभागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
2: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
4: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
5: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और

0: देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही

0: Ash Tiwari, Deputy Director General, Narcotics Control Bureau, and Nishit Kumar, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: Spotlight.
2: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।
3: साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942। पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिम्फनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, Adhyaksh, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg. And behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और सरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था?

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा, और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता, बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुने और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया, ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था 1942 में, क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल एंड कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर, इसको 3 टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास 2T, जस्ट दैट वाज द फोर्स, जवान के कदमों के लिए फोर्स लाना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन HB बराल, हिम महादेव बराल को दिया गया और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
2: दिस इज फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom kadam kadam badhaye, this is melody, pehle jo tha introduction tha, now melody, kadam kadam badhaye ja khushi ke geet gaaye ja la la la la la la la la la la la la la la la la, this is melody, now is a brass beat, la la la la la la la la pa pam pam pam pam pam pa pam pa pam tam taram taram tam pam pam pam da da, this is the brass duty, this is the josh jawan ke hriday mein lane ke liye, dimag mein lane ke liye, then again is a melody, la ra la ra ra ra ra ra खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा।
0: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
3: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए, वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए, मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से

जाना है, और एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है। और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है, वो सब कुछ इस गीत में है।

0: झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे।
1: जितने भी ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से, बेशक उनमें कच्चापन है लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जंग करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
2: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
3: द ट्रायल बिगन ऑन द 5th ऑफ नवंबर एंड एंडेड ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ 1945, एंड देयर वाज अ ह्यूज पॉपुलर अपसर्ज अक्रॉस द होल कंट्री इन सपोर्ट ऑफ नेताजीज सोल्जर्स। एंड इवन इफ द ब्रिटिश ट्राइड टू you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example on Netaji's birthday on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
2: Captain Ram Singh ki conducting baton ne hazaron dilon ki dhadkanon ko एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
4: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की, और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: हंसते हंसते जीना नेताजी।
1: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
2: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हसर जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।
3: वो दिल ही नहीं जिसमें न हो चाह वतन की, वो दिल ही नहीं जिसमें न हो चाह वतन।

शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना उना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ें, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of शुभ सुख चैन की is slightly different. There are nuances which are different from the tune of Dinendranath Tagore's Janagana Mana. There are more komal notes that have been added. The second verse of the Janagana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Aharah tab avhan pracharit shuni tab udar bani Hindu Bodh Shikh Jaino Parashikh Musalman Krishtani Purab Pashchima

0: 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जनगण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
1: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
0: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख बसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
2: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा की आज के इस आयोजन

0: हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
1: नमस्कार। इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
0: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिकल फैमिली, श्री देवले रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक फ्रॉम हिज मदर द लेट श्रीमती लता देवले। लेटर ही स्पेशलाइज्ड इन टप्पा सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री रघुनाथ वाघ ऑफ द ग्वालियर घराना। फर्दरमोर अंडर द ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा ही रिसीव्ड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत एंड भजन्स फ्रॉम द पद्मश्री रेसिपिएंट पंडित जितेंद्र अभिषेकी।
0: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हैं।
1: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, श्री देवले हैज डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस एट प्रेस्टिजियस नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द तानसेन, कालिदास एंड सवाई गंधर्व फेस्टिवल, as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya Awards.
0: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, pyare degar lagi, jo ek taal mein nibadh hai. Drut khayal ke bol hain, chalo hato ji chhel, kahe roke gail, jo tritaal mein hai. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हार्मोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

0: राग पुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना की बोल हैं बर्निन जाए सखी जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना की बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी जो त्रिताल में है।
1: That was a classical vocal performance by Shri Sudhakar Devle in Raag Puriya. Shri Devle will now present Raag Basanti Kedar, set to Jhaptal with the lyrics Barnin Jai Sakhi, set to Trital with the lyrics Meri Basant Ab Ayori.

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस धनी में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारे दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ श्री सुधाकर देवले जी इन राग बसंती केदार। श्री सुधाकर देवले इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दिम तदारे दानी दिम।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। अकंपनिंग हिम वर प्रमोद बोरगांवकर ऑन द हारमोनियम एंड उल्लास राजहंस ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में आप राष्ट्रीय

0: यह नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
0: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया